0: 做了
1: 对谢谢
0: ये बेला हम स्टूडियो को घड़ी में दिवसो को तीन बजे
2: यस टाइमचेक का प्रायोजक दीर्घायु हॉस्पिटल प्रणाली तिलोत्तमा पांच मणिग्राम रूपंदेही
3: के तपाईलाई गर्दन वा कम्मर में नसा च्यापिएको प्यारालाइसिस मुख बांगिने एलर्जी छाला रोग का समस्या पुराना रुगाखोकी टन्सिलाइटिस अनिद्रा माइग्रेन डिप्रेशन मानसिक तनाव हाथ खुट्टा घुड़ा कुहिना पोल्ने वा झमझमाउने हड्डी खिएर हाट जोड्ने मांसपेशी वा बाघ को दुखाई यूरिक एसिड बढ़े महीनावारी को दुखाई यौन समस्या बाँझोपन मोचोपन अरुचि मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप जस्ता समस्याहरू छन् भने आधुनिक मेसिन को साथ में संपूर्ण सेवा को उपचार एक गरिन्छ प्राकृतिक चिकित्सालय दीर्घायु हॉस्पिटल प्राली तिलोत्तमा पांच मणिग्राम रूपंदेही फोन नंबर 071-562-459 र 9645-78-232

0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: विचार तितो पनि मिठो पनि विषय राजनीतिक पनि गैर राजनीतिक अति परिचित पनि अपरिचित पनि र सरोकार सीधा तपाईसँग प्रत्यक्ष पनि अप्रत्यक्ष पनि द न्यूज प्लस रेडियो थाहा संचार 99.4 सहित थाहा संचार नेटवर्क का पार्टनर स्टेशन